0: और जिस दिन वो इन सब को जमा करेगा फिर फरिश्तों से फरमाएगा, क्या ये लोग तुमको पूजा करते थे? वो कहेंगे तू पाक है, तू ही हमारा दोस्त है, ना कि ये, बल्कि ये जिन्नात को पूजा करते थे और अक्सर उन्हीं को मानते थे। तो आज तुम में से कोई किसी को नफा और नुकसान पहुंचाने का इख्तियार नहीं रखता, और हम जालिमों से कहेंगे कि अब दोजख के अजाब का जिसको तुम झूठ समझते थे मजा चखो। और जब उनको हमारी रोशन आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो कहते हैं ये एक ऐसा शख्स है जो चाहता है कि जिन चीजों की तुम्हारे बाप दादा परस्तिश किया करते थे उनसे तुमको रोक दे। और ये भी कहते हैं कि ये कुरान महज झूठ है जो अपनी तरफ से बना लिया गया है, और काफिरों के पास जब हक आया तो उसके बारे में कहने लगे कि ये तो खुला जादू है।
1: वरना

0: और काश तुम देखो जब ये घबरा जाएंगे तो अजाब से बच नहीं सकेंगे और नजदीक ही से पकड़ लिए जाएंगे और कहेंगे कि हम इस पर ईमान ले आए, और अब इतनी दूर से उनका हाथ ईमान के लेने को कैसे पहुंच सकता है जबकि पहले तो उसका इनकार करते रहे और बिन देखे दूर ही से अटकल के तीर चलाते रहे, और इनमें और इनकी ख्वाहिशों में पर्दा हायल कर दिया गया जैसा कि पहले इनके हम जिनसों से किया गया, वो भी उलझन में डालने वाले शक में पड़े हुए थे।
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: किया है सिंधजी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खां भी डाढ़ा, नियर नहीं का चीज में आहे सकी करो।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: مرشد حسین زندہ باد مو
1: اپنا شہر اپنا گھر مٹیاری اور مٹیاری کی آواز
2: جی ایف ایم 91.6
3: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
4: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
5: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
6: अमरीका नार ओमान में बहरी नाकाबंदी टोड़ण जी कोशिश कंदड़ जहाज के नाकारा बनाए छड़ियो अमरीकी फौज चवण आए त जहाज चार भेरा नाकाबंदी पार करण जी कोशिश कई वधीक बारन जहाज अड़ियो वयो अमरीका अपने और ईरानी टैंकर के तबाह करे छड़ियो बजणा मारजी वया सऊदी तादी फौज पारा यमन के अलहदेदा ते हमले की तस्दीक सऊदी तादी फौज है यमन के अलहदेदा में हूसी फौजी ठिकाणन स्ट्रेटिक हंधन के निशानो बणायो अलहदेदा बंदरगाह के निशानो बणाए अलहदेदा बंदरगाह के निशानो नाए बणायो समूरी बंदरगाहों जहाज के अचुन लाय खुलियल आन हूसीन पारा आग्रह जो सिलसिलो जारी रो तो पेरे का सख्त जवाब दिनो वेंदो पाकिस्तान में एक मंसूबे तहत दहशतगर्दी थी रही है पाकिस्तान में थींदड़ दहशतगर्दी में भारत मुलविस है पाड़ेसरी मुल्क के भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं बलोचिस्तान बाबत वर्कशॉप के खिताब कंदे वजीर आजम शहबाज शरीफ चेता अफगान रजीम दहशतगर्दन के रोकने में नाकाम वो है सभी के गजी दहशतगर्दी में मुकाबलो करो पव बलोचिस्तान जो हुकूमत सदाई वफाक की मजबूती लाय कम किया बलोचिस्तान की तरक्की मुल्की तरक्की से गंढियल है खिते में अमन के क्याम लाय पाकिस्तान दुनिया के सामू आए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सागदार जो कोशिशों सारा जोगियो आएं

0: अपना शहर
1: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
2: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
3: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
4: अमेरिका नारो मान में बहरी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कंदड़ जहाज के नाकारा बनाए छो अमेरिकी फौज जो चवण है जहाज चार भेरा नाकाबंदी पार करण की कोशिश कई बारह जहाजन जो रुख भी मोड़ो वो अमेरिका आबाई आबनाई हरमूज में ईरानी टैंकर के तबाह कर छो बणा मार वाया सऊदी इतिहादी फौज पारा यमन के अलहदीदा बंदरगाह ते हमले की तस्दीक सऊदी इतिहाद यमन के अलहदीदा बंदरगाह में हूसी फौजी ठिकाणन स्ट्रेट जक हंधन के निशानो बणायो अलहदीदा बंदरगाह के निशानो नाहे बणायो समूरियूं बंदरगाहूं जहाजन के अच वंज लाइ खुलियल आहिनि हूसीन पारा अगराइन जो सिलसिलो जारी रहियो त पहिरीं खां सख्त जवाब डि॒नो वेंदो दहशतगर्दी थी रही समझाइण जी कोशिश करे रहा आहियूं बलूचिस्तान बाबत वर्कशॉप के खिताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो आहे त अफ़गान रजीम दहशतगर्दन के रोकण में नाकाम वयूं आहिनि सभिनी खे गॾिजी दहशतगर्दीअ जो मुक़ाबलो करणो पवंदो बलूचिस्तान जी हुकूमत सदाई वफ़ाक जी मज़बूतीअ लाइ कम कयो आहे बलूचिस्तान जी तरक़ी मुल्की तरक़ीअ सां ॻंढियल आहे ख़िते में अमुन जे क़याम लाइ पाकिस्तान जो किरदार दुनिया जे साम्हूं

पर कनि था कंहिंखे बि हक़ नाहे त सिंधियुनि ऐं कश्मीरियुनि खे सियासी तंज जो निशानो बणाए। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह जो चवण आहे त कश्मीर हुजे या कश्मोर, मीरपुर हुजे या मीरपुर ख़ासि, पाकिस्तान जो हर इलाइक़ो फ़ख्र जोॻो आहे। ज़ाती मुफ़ाद खां मथां थी पूरे पाकिस्तान जी नुमाइंदगी जो अहसास हुजणु घुर्जे।

वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जे सभ खां वॾी डेटा सेंटर स्काई 47 कराकरम हाई वन जो इफ़्तिताह करे छॾियो। डेटा सेंटर डिजिटल ख़िदमतनि लाइ मज़बूत बुनियाद फराहम कंदो। सेंटर हथरादू ज़हानत मशीन लर्निंग ऐं हाई परफॉर्मेंस कम्प्यूटरिंग जूं घुर्जूं पूरियूं करण जी सलाहियत रखे थो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो आहे त मुआरका हक में कामयाबी मुल्की तारीख़ जो अज़ीम तरीन लम्हो हो। ॾुखियाईनि ऐं चैलेंजेस जो हौसले सां मुक़ाबिलो कयो त मुआरका हक़ जहिड़ा तारीख़ी कारनामा जनम वठंदा आहिनि। लाॻीतो महिनत अहिड़नि अज़ीम मनसूबनि खे हक़ीक़त जो रूप ॾींदी आहे। स्काई 47 जहिड़ा मनसूबा पाकिस्तान जे मुस्तक़बिल जी ज़मानत आहिनि।

वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा खे फोर स्टार जनरल जे उहिदे ते तरक़ी ॾेई छॾी। तरक़ी बाद लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा कमांडर नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड मुक़रर। आमिर रज़ा खे फोर स्टार जनरल जे उहिदे ते तरक़ी मिलण ते वज़ीर-ए-आज़म पारां वाधायूं, नयूं ज़िमेवारियूं मिलण ते नेक ख़्वाहिशनि जो इज़हार बि कयो।

सिंध जे राजधानी कराची समेत सूबे जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में किथे तेज़ त किथे हल्की बरसाति। कराची जे मंगो पीर गुलशन में मार गुलशन इक़बाल साइट एरिया ऐं भर पासे वारनि इलाइक़नि में तेज़ वसकारो। सदर में जिना रोड डिफेंस क्लिफ्टन शाहरा फैसल कोरंगी भादराबाद PHC बल्दिया आगरू मंदर नॉर्थ कराची नॉर्थ नाज़माबाद FB एरिया ऐं ॿियनि इलाइक़नि में हल्की बरसाति वसकारो शुरू थींदे ई के इलेक्ट्रिक जा 100 खां मथे फीडर्स ट्रप थी विया। अॻो तलहार नूरियाबाद ऐं ॿियनि इलाइक़नि में बरसाति खां पोइ मौसम ख़ुशगवार। खिपरो में खिवण किरण सबबि 4 वरियनि जो ॿारड़ो। विनोद कोली फोत, 1 ज़ख़्मी।

हुकूमत लागी तो पंजे डी भी पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि में वाध करे छॾी। पेट्रोल 3 रुपया 60 पैसा ऐं डीज़ल 4 रुपया 80 पैसा फी लीटर महांगो। पेट्रोल जे नए क़ीमत 335 रुपया 18 पैसा ऐं डीज़ल जी नई क़ीमत 383 रुपया 46 पैसा फी लीटर थी वई। जारी थियल नोटिफिकेशन मूजिबि पेट्रोलियम शयुनि जा नवां अघ 24 कलाकनि लाइ लागू थींदा।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: तैयारी के हो तो आवाज भी है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: झुर्रियों, छाइयों, कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
4: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। It's 10:30 AM. This time

0: अब दर्द को कहें
1: फकीरी इंडेक्स, ये ऑइंटमेंट
0: मुतासर चोट पुराने
1: और
0: तीन मर्तबा नरमी से लगाएं
1: इंडेक्स और खूबसूरती
2: सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं डीए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीहन जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
3: अभी बुधो पिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज
4: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
3: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो

0: जब दिमाग ही नॉर्मल ना हो तो फिर कुछ नॉर्मल नहीं होता, और यही बात इसको समझ में नहीं आ रही।
1: मेरी बच्चियों की खुशियों को नजर ना लगे किसी की, बहुत दुख देखे इन्होंने दो सालों में।
2: हो गई बर्बाद में, लग गई मेरी खुशियों को आग।

0: It's 10:45 AM. This time check is brought to you by.
1: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना फाल किरदार मुसलसल अदा करते रहेंगे. अस्करी बैंक.
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है.
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है.
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: झुर्रियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए.
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास. हर रोज कुदरती निखार.
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है. फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए.
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो. डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते.
5: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज़
6: GFM 91.6.

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
3: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
4: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.

हुकूमत लाॻीतो पंजे ॾींहं बि पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि में वाधि करे छॾी। पेट्रोल 3.60 रुपया ऐं डीज़ल 4.80 रुपया फी लीटर महांगो। पेट्रोल जे नई क़ीमत 335.18 रुपया ऐं डीज़ल जी नई क़ीमत 383.46 रुपया फी लीटर थी वई। नवां अघ 24 कलाकनि लाइ लागू हूंदा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जे वेझनि सलाहकारनि सां मुलाक़ात। ईरान ख़िलाफ़ वॾनि हमलनि ते गौर। सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो त ईरान ते वॾे हमले बाबति अञा फ़ैसिलो नाहे कयो। ईरान ॻाल्हियुनि लाइ संजीदा आहे, मुआदो करणु नथो चाहे। तेहरान सां राब्ता जारी आहिनि, नतीजनि जो इंतज़ार आहे। सऊदी अरब खे इब्राहिम मुआदे जो मेंबर हुअणु घुर्जे। सऊदी अरब इब्राहिम मुआदे जो हिसो न बणजंदो त एटमी मुआदो न कंदासीं। ट्रंप जे चीन ऐं रूस खे ईरान खे हथियार फराहम करण ते संगीन नतीजा भोगण जी बि धमकी। अमेरिका पारां ओमान में बहरी नाकाबंदी टोड़ण जी कोशिश कंदड़ जहाज खे नाकारा बणाइण जी दावा। अमेरिकी फ़ौज जो चवण आहे त चार भेरा नाकाबंदी टोड़ण जी कोशिश कई। वधीक 12 जहाज़नि जो रुख बि मोड़ियो वियो। अमेरिका आबनाह हरमुज़ में ईरानी टैंकर खे तबाह करे छॾियो। 2 ॼणा विया। सऊदी फ़ौज पारां यमन जे अल हुदीदा बंदरगाह ते हमले जी तसदीक। सऊदी फ़ौज चयो आहे त यमन जे अल हुदीदा बंदरगाह में हुसी फ़ौजी ठिकाणनि स्ट्रेट जग बंदरगाह खे निशानो नाहे बणायो। समूरियूं बंदरगाहूं जहाज़नि जे अचवञ लाइ खुलियल आहिनि।

0: खैरपुर जिला अदालत में प्रिया समेत बेन मुगवी बारन की बाजियाबी लाए लगल धरने ते तशद्दुद ए गिरफ्तारन खिलाफ दाखिल दरख्वास्त ते बुधणी सोनी पारस लियाकत जलवाणी ए बेन की आजादी बाद वकीलन दरख्वास्त वापस वठी छदी। अदालत दरख्वास्त वापस वठण ते उकलाए छदी। सोनी पारस लियाकत जलवाणी ए बेन के पुलिस रात देर से आजाद कयो हो। भान सईदाबाद में ट्रक ड्राइवरन जो मोटरवे पुलिस के ज्यादतन खिलाफ इंडस हाईवे ते धरनो। ट्रक ड्राइवरन गाड़ियों बिहारे मोटरवे पुलिस खिलाफ नारेबाजी कई। इंडस हाईवे ते धरने सबब बिन्हीं पासन का केतर गाड़ियों बीह वयू। मोटरवे पुलिस जो ज्यादतियों बंद करण जो मुतालबो। थानो बोला खान वेझो अस्पताल वींदड़न की गाड़ी हादसे जो शिकार। बिन औरतन समेत टे जणा फौत टे जख्मी। थानो आरिफ खान रोड ते मोड़ काटींदे कार कल्टी थी पई। औरत ताजल नाजा ए ताजो जावल बार फोत थी वया। टे जणा जख्मी। मुतासरन मौजूद अस्पताल वंजण दौरान गाड़ी सा हादसो पेश आयो। सिंध के मुख्तलिफ शहरन में किथे हल्की त किथे तेज बरसात। कराची मिठी ए छोर में ककर वसी पया। कराची के मुख्तलिफ इलाकन में हल्की बरसात बाद मौसम खुशगवार थी वयो। मिठी ए छोर में भी हल्की बरसात मौसम खुशगवार थी वही। सूबे के मुख्तलिफ शहरन ते कारन ककरन जो राज। एक वण सिंध अमर के नाव। केटीएन न्यूज ए कावस के वण पोखण वे सद के भरपूर मोट। सिंध के मौसमियाती तब्दीली के असरन का बचाण लाए वण लगाण वे सद ते सिंध वासिन वण लगाण शुरू कर छ्या। केटीएन न्यूज ए कावस पारा 31 जुलाई 2026 तई वण पोखण जो सद डिनल है।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
3: यार ही गोडन जो सूर ए चेल जो सूर तो मुझे जान ही करी छड़ी आहे। हलण वेहण हर कम दुख्यो लगे थो।
4: तो पोई छा अन्या तई फकीरी एनल जैसे क्रीम इस्तेमाल न कई थी?
3: न यार, छा वाकई फायदो करे थी?
4: बिल्कुल अदा, कुदरती जुजन सा तैयार कैल फकीरी एनल जैसे क्रीम मुतासिर हंद ते जल्दी जजब थी। सूर सोडिय जिस्म जी नसन जी छिक आई अकराहट मां आराम पहुंचाण में मदद करे थी। चेल जो सूर हुजे गोरन जो सूर कंध आई कुलन जी तकलीफ या वर्जिश का पोए छिक हर हालत में बेहतरीन साथी। फकीरी एनल्जेसिक क्रीम
3: इस्तेमाल किए कजे
4: रुगो मुतासिर हंद ते डीह में 3-4 भेरा नरमी सा लगाए आई आराम जो एहसास वठ। आई बुध जेकर उमरे या हज ते वनण जो इरादो अथई त फकीरी एनल्जेसिक क्रीम जरूर पान सा गड खणी वंजा।
3: वाह, पोए अजी वठींदस।
4: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम अडवी पांजे वेजे मेडिकल स्टोर ता नालो वठी खरीद करियो।
5: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: गम। देखिए नया ड्रामा सीरियल पागलखाना 29 जनवरी से रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंधु जो आवाज।
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज में आहे रखी कड़ो नहीं।

0: It's 12 PM. This time check is brought to you by
1: Al Habib Current Plus Account, RP. Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN
3: फराम करण ते संगीन नतीजा भोगण जी भी धमकी। अमेरिका पारां ओमान में बहरी नाकाबंदी टोड़ण जी कोशिश कंदड़ जहाज के नाकारा बणाइण जी दावा। अमेरिकी फौज जो चवण आहे त जहाज चार भेरा नाकाबंदी टोड़ण जी कोशिश कई, वधीक 12 जहाजन जो रुख भी मोड़ियो वयो। अमेरिका आपना हरमुज़ में ईरानी टैंकर के तबाह करे छॾियो, 2 जणा मारजी विया। सऊदी इतिहादी फौज पारां यमन जे अलहुदीदा बंदरगाह ते हमले जी तस्दीक। सऊदी इतिहादी फौज चयो आहे त यमन अलहुदीदा बंदरगाह में हूसी फौजी ठिकाणनि स्ट्रेटजिक हंधन खे निशानो बणायो। अलहुदीदा बंदरगाह खे निशानो नाहे बणायो। समूरियूं बंदरगाहूं जहाज़नि जे अच वञ लाइ खुलियल आहिनि। सिंध में बदमनी ऐं करप्शन चोट चढ़ियल आहे। कराची समेत सूबे जा शहर खंडर बणियल आहिनि। कराची खे बि 18 सालनि दौरान तबाह कयो वियो आहे। हेठी सतह ताईं इख़्तियारनि जी मुंतकिलीअ लाइ सभु आइनी रस्ता इस्तेमाल कंदासीं। मुस्तफ़ा कप सिंध में 2,60,00,000 ॿार स्कूलनि खां ॿाहिरि आहिनि। मुगवी ॿारनि जी इतिजाज कंदड़नि माइरनि ते बि डंडा वसाया विया। सिंध मां लुटियल पैसो दुबई में लॻायो वियो, जंहिं सबब दुबई में मिलगियूं। अदालत में प्रियासी ॿारनि जी बाज़ियाबी लाइ लॻल धरणे ते तशदुद ऐं गिरफ़्तारियुनि खिलाफ़ दाख़िल दरख़्वास्त ते ॿुधणी। सोनी पारस, लियाकत जलबाणी ऐं ॿियनि जी आज़ादी बाद वकीलनि दरख़्वास्त वापसि वठी छॾी। अदालत दरख़्वास्त वापसि वठण ते उकलाए छॾी। सोनी पारस, लियाकत जलबाणी ऐं ॿियनि खे पुलिस रात देर सां आज़ाद कयो हो। पंजाब जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में चौमासे जा वसकारा जारी। लाहौर, सरगोदा, हाफिज़ाबाद, वहाड़ी ऐं ॿियनि शहरनि में बरसाति। मुख़्तलिफ़ रोडनि ते गोॾे जेॾो पाणी बीठल, शहरी परेशान। मीरपुर बुरड़ो मां 5 ॾींहं अॻु अॻवा थियल नौजवान आज़ाद न थियो। वारसनि जो एहतजाजी मुज़ाहिरो। ॻोठु लाल बख़्श बुरड़ो वासी नौजवान मोहम्मद रमज़ान बुरड़ो जे वारसनि एहतजाज कयो। वारसन जो चवण आहे त नौजवान गुज़िरियल 5 ॾींहनि खां खानपुर वियो, इख़्तियारियूं नोटिस वठी आज़ाद कराइनि। भान सईदाबाद में ट्रक ड्राइवरनि जो इजाज़तनि ख़िलाफ़ इंडस हाईवे ते धरणो। ट्रक ड्राइवरनि गाॾियूं बीहारे मोटरवे पुलिस ख़िलाफ़ नारेबाज़ी कई। इंडस हाईवे ते धरणे सबबि ॿिन्ही पासनि खां केतिरियूं ई गाॾियूं बीह वयूं। मोटरवे पुलिस जूं ज़्यादतियूं बंदि करण जो मुतालबो। थाणो बोला खान वेझो इस्पताल वींदड़नि जी गाॾी हादसे जो शिकार। ॿिनि औरतनि समेत 3 ॼणा फोत, 3 ज़ख़्मी। थाणो आरिफ खान रोड ते मोड़ काटींदे कार कल्टी थी वई। औरत ताजल नाज़ा ऐं ताज़ो ॼावल ॿार फोत थी विया। 3 ॼणा ज़ख़्मी थिया। मुतासिरनि मूजिबि इस्पताल वञण दौरान गाॾी सां हादसो पेश आयो। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में किथे हल्की इतिकात। कराची, मिठी ऐं छोर में ककर वसी पिया। कराची जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में हल्की बरसाति बाद मौसम ख़ुशगवार थी वई। मिठी ऐं छोर में बि हल्की बरसाति, मौसम ख़ुशगवार थी वियो। सूबे जे मुख़्तलिफ़ शहरनि ते कारनि ककरनि जो राज।

0: ऐं हिकु वण सिंध अमर जे नाओ केटीएन न्यूज़ ऐं कावश जे वण पोखण वारे सॾु खे भरपूर मोट। सिंध वासियुनि पारां सिंध खे मौसमियाती तब्दीली जे असरनि खां बचाइण लाइ वण लॻाइण वारे मुहिम जारी। केटीएन न्यूज़ ऐं कावश पारां 31 जुलाई 2026 ताईं वण पोखण जो सॾु ॾिनल आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: यार ही गोडन जो सूर है, चेल जो सूर तो मुझे जान ही करी छड़ी है। हलण वेहण हर कम दुख्यो लगे तो।
4: तपोई छा अन्या तई फकीरी एनल जैसे क्रीम इस्तेमाल न कई थी?
3: न यार, छा वाकई फायदो करे थी?
4: बिल्कुल अदा, कुदरती जुज़न सां तैयार कयल फकीरी एनल में मदद करे थी। चेल जो सूर हुजे के हर हालत में बेहतरीन साथी। फकीरी एनल
3: इस्तेमाल किए कजे
4: अंदते डीएम में 3-4 भेरा नरमी आई बुध असा गड खणी वंजा।
3: वाह,
4: थिक क्रीम अडी पांजी वेजी मेडिकल स्टोर ता नालो वठी खरीद करयो।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: It's 12:15 PM.
2: This time check is brought to you by
3: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.

ज्यादा पिज्जा किस शहर के लोग खाते हैं? बिल्कुल जी, आज के प्रोग्राम का सवाल मैंने आप लोगों से ये पूछा कि आप मुझे बताएं यानी कि ज्यादा पैसे, अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो ऐसा कीजिए, अपना LRK सिंगल स्टार अपना नाम लिखिए।

3840309. ये अगर आप अपने करीबी जन अवेलेबल कराना चाहते हो तो वाइट एज ब्यूटी प्रोसेस करवा सकते हैं। आप लेना चाहते हैं और अवेलेबल होने चाहिए किसी भी जो इनाते हैं किसी भी करीबी जन स्टोर पर वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल तो वाइट एज सारे बहुत अच्छे जैसे कि नाइट सारे प्रोडक्ट्स हैं और साथ साथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपको मिल रही है और साथ में डी स्किन फेस वॉश आपको मिल रहा है। अब इनके क्या तरीकेकार होंगे लगाने के वो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी, लेकिन यहाँ पर आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद दीजिए अनवर अली दीदी। अस्सलाम वालेकुम। हाय सिद्रा, कैसी हो? अदी, गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे, आपको भी वेलकम कहा जाता है। आदिल हुसैन, वालेकुम अस्सलाम, कहते कैसी हैं? मैं ठीक, आप बताएं। और कहते हैं सॉन्ग सुनाइएगा। ओके, मैं कोशिश करती हूँ, लगाएंगे आपका गाना। अनवर कहते हैं पोइट्री, अपने दिल में नफरत मत रखो क्योंकि जिस दिल में नफरत होती है उसके दिल में अल्लाह पाक नहीं बसता। ओके, और चाचा खालिद जुड़े जो हमारे साथ मौजूद दीजिए, वालेकुम अस्सलाम, कहते हैं How is your mood? And दिल का मौसम सिद्धो बेटा, होप वेल। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ ठीक ठाक अपनी जगह पर, आप बताएं कैसे। और हैं जी आबिद परदेसी भाई हमारे साथ, आपको भी खुश आमदीद कहा जाता है। इखलाक बलोच हमारे साथ, नाइस यो, थैंक यू इखलाक भाई। अनवर भाई कहते हैं सिद्रा आज आपका मूड ठीक है। जी जी, और मोहम्मद अली खोसो में सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, कहते हैं आप अच्छा, यानी कि आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आता है। थैंक यू जी, थैंक यू। और अब्दुल गफूर केसर हमारे साथ, वालेकुम अस्सलाम कहा जाता है। इस तरह पोस्ट को लाइक और शेयर करती रहिए। चाचा खालिद आपने गाने की फरमाइश करिए, मैं लगाने की कोशिश करूंगी। और रमजान अली हमारे साथ, वालेकुम अस्सलाम, इन मौला अलैहिस्सलाम मदद कहा जाता है प्यारे भाई को। और साजिद हुसैन सुमरो हमारे साथ, साजिद हुसैन सुमरो, वालेकुम अस्सलाम, मौला अलैहिस्सलाम मदद, आप हमें सुन रहे हैं मिठू देरो से, आपको भी वेलकम कहा जाता है। और हैं जी अब्बास अली नोहरियो, अब्बास अली कहते हैं शहबाज जान नोहरियो डिस्ट्रिक्ट थर्ड पार्कर से आप हमारा शो सुन रहे हैं, जी वेलकम कहा जाता है। अयाज अली खास के लिए हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम। अशोक कुमार हमारे साथ ही, हाय सिद्रा कैसी हो? आई एम अशोक कुमार। ओके जी, फ्रॉम दिल्ली इंडिया से अशोक कुमार हमें इंडिया से सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और हैं जी गुलाम फरीद बलोच हमारे, वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं जनाब? आपका प्रोग्राम वेरी ब्यूटीफुल है, सॉन्ग सुना दीजिएगा। बिल्कुल जी, आपको ब्यूटीफुल सा गाना सुना देंगे। मोहम्मद जमान आ चुके हैं, वेलकम स्वीट कोयल सदाबहार सिद्रा। अबुआ जी, हाँ जी बोले, कैसे ही ठीक ठाक। रमजान अली कहते हैं मेरा महबूब इतना नादान है कि पूछो मत, मोहब्बत का दावा हमसे करके साथ किसी और का निभा रहा है। वाह साईं वाह, ये तो गदारी हो गई। अच्छा, मीरपुर खास अब्दुल्ला महर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बाजी, शो आपका वेरी नाइस है, वाइट एज ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या बात है। और हमारे साथ हैं यहाँ पर, हाय सिद्रा प्लीज प्ले सॉन्ग। हाय सिद्रा तो लिख दिया, अपना नाम भी लिख लेते तो कितना ना अच्छा होता। नाम लिखा करिए अगर आप हमें ज्वाइन करते हैं पैनल पर, खास करके मैसेज करते हैं। मोहम्मद अली खोसो कहते हैदराबाद से प्रोग्राम सुन रहा हूँ, जबरदस्त सिद्रा, आपकी सारी टीम को सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद एंड बखैर अगले। और साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं जी, जुड़ना चाहते हैं तो ज्वाइन करते जाइए, पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए और टॉपिक को फॉलो करते रहिए। मैंने जो आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया है तो जरा उसका जवाब बताइए ना। तो सवाल ये है कि आप मुझे बता रहे हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा पिज्जा जो है वो किस शहर के लोग खाते हैं। हाँ जी बताइए मुझे जल्दी से, और इसी के साथ साथ यहाँ पर टाइम हुआ चाहता है जरा हम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जाने जाते हैं, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, बस हमारे साथ मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए जो कि पूरी पूरी 3 बजे तक। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाते रहिए ताकि आप भी खूबसूरत हो जाए।

0: दोपहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: क्या आप आसाबी दर्द

0: तफरी से रिश्ता जोड़ो, सुनते रहो GFM 88.8 मोरो की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: हर लहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
2: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
3: कमर दर्द या पट्टों की सूजन से परेशान हैं?
2: अब दर्द को कहें अलविदा
3: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
2: जी हाँ,
3: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
2: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
3: ये ऑइंटमेंट
2: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
3: दर्द, सोजिश
2: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
3: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
2: गर्दन और कमर की तकलीफ,
3: पट्टों के खिंचाव, मोच,
2: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
3: और जल्दी जलन में मुफीद।
2: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
3: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
2: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबले एतमाद मयार।
3: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
4: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तो मेरा फैन।
1: व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंधु जो आवाज।
3: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
2: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

के हो तो आवाज भी सिंसी है। GFM नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंकी आवाज।

0: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर जोड़न जी तकन फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
1: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करीं?
0: इहा वाकई फ़ाइदे वारी आहे छा?
1: बिल्कुल, फ़क़ीरी डेक्स मरहम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
0: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
1: न दा, असाबनि जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
0: इस्तेमाल कीअं कजे?
1: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हा, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम, हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो। फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
2: जिंदगी गुज़ारियो एतमाद सां, कुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: अभी ॿुधो पिया GA हैदराबाद मटियारी FM नरिक्स।
4: मैं आप लोगों को 2 बजे के बाद बताऊंगी। अभी आप लोगों को व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी। तो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोगों को ये चीजें जो है वो बतानी बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप लोगों को इस चीज का अंदाजा हो सके कि अगर आप मार्केट जाएं तो आप लोगों ने कौन कौन से प्रोडक्ट जो है वो परचेज करने होते हैं। अक्सर हम जब मार्केट जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। ये कंफ्यूजन बड़ी आम सी है कि जब भी हम मार्केट जाते हैं तो हमें चीज समझ

थी कि हम लेने क्या गए थे, हम लेकर क्या आ जाते. तो ये चीज आके दूर करेंगे, आप लोगों को बताएंगे जब आप मार्केट जाएं तो आप लोगों के जहनों पर भाई ये चीज फिट हो, वाजे हो कि आपने वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का कौन सा प्रोडक्ट परचेज करना है. तो आप अपने हिसाब से परचेज करेंगे जो भी आप प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं. जैसे कि भाई आप लोगों के लिए वाइटिश ब्यूटी क्रीम भी है, वाइटिश लवली क्रीम भी है, वाइटिश का सोप भी है, वाइटिश का फेस वॉश भी है, और उसके अलावा डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब भी है. ये तमाम प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप लोगों की खूबसूरती के मुताबिक तैयार की गए. तो अगर शुरुआत की जाए कौन से प्रोडक्ट से, तो मैं शुरुआत करूंगी डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब से. डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो है ना, ये खास करके उन खवातीन के लिए तैयार किया गया है, उन मर्द हजरात के लिए तैयार किया गया है जो कि भाई अपने चेहरे के एक्नी की वजह से परेशान है. एक्नी यानी कि दाने अगर आपके चेहरे पर भी मौजूद है और दानों को खत्म करना चाहते हैं, ना सिर्फ दाने बल्कि आपके चेहरे पर जो दानों के निशानात हैं, कोई कट का निशान है, कोई जलने का निशान है, कोई इस तरह का निशान जो कि हमेशा से आप अपने चेहरे पर देखते आ रहे हैं, लेकिन आपको उसका सलूशन नहीं पता कि भाई ये कैसे दूर होगा, कैसे खत्म होगा, तो आपके पास डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब मौजूद है. ये जनाब इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है ना कि यकीन जाने मैं खुद इस्तेमाल कर चुकी हूँ. और भाई मुझे ना ऐसा है कि जिसको भी मैं देखती हूँ जिसके चेहरे पर एक्नी और वो परेशान है बहुत ज्यादा, तो मैं कहती हूँ भाई आप मेरे कहने पर डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब का इस्तेमाल करके देखेंगे. फुल जड़ी बूटियों से तैयार किया गया है, यानी इसके अंदर जड़ी बूटियां ऐड की गई है, आयुर्वेदिक फार्मूला है, और उसके अलावा ये आपके चेहरे पर जो एक्नी होती है ना उनसे फाइट करेगा, आपके चेहरे पर जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है उसे खत्म करेगा, आपके चेहरे पर ब्लैक हेड्स हो, व्हाइट हेड्स हो, ब्लैक पॉट्स हो, या फिर एक्नी आपका किसी भी साइज का हो. यानी कि बहुत से लोगों के चेहरे पर कुछ छोटे छोटे एक्नी निकल आते हैं, कुछ चेहरे ऐसे होते हैं कि बड़े बड़े एक्नी निकल आते हैं, तो किसी भी तरह का एक्नी हो वो खत्म हो जाएगा जब आप डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब का इस्तेमाल करेंगे. और डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब को लगाने के क्या तरीकेकार हैं, तो लगाने के तरीकेकार थोड़े से मुख्तलिफ कह सकते हैं, क्योंकि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा होता है ना, सिर्फ आप रात के टाइम ही लगाना पसंद करते हैं या फिर सोचते हैं कि भाई जो क्रीमें होती हैं वो रात के टाइम लगाएंगे, तो पहली बात तो ये कि ये क्रीम नहीं है, ये एक ट्यूब है, और ये फुल जनाब आयुर्वेदिक फार्मूला भी है, और साथ साथ मेडिकेटेड फार्मूला भी है, डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर भी तैयार किया गया है. और उसके अलावा इसे आप दिन में भी इस्तेमाल करेंगे, यानी कि सुबह को भी लगाएंगे और रात को भी लगाएंगे. अगर एक्नी बहुत ज्यादा है तो फिर आप तीते यानी कि दोपहर में भी लगा सकते हैं. वैसे इसको लगाने के जो तरीकेकार हैं वो बहुत ज्यादा आसान है, और बहुत ज्यादा ऐसा सीन बनेगा कि जब आप डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब का इस्तेमाल करेंगे ना, तो लगाने से पहले अपना फेस वॉश आप लाजमी कीजिएगा. फेस वॉश करने के बाद ही आप अप्लाई कीजिएगा. लगाने के बाद आप लोगों को इतना अच्छा ठंडक का एहसास होगा, इतना ठंडा ठंडा लगेगा ना आपको कि आके एक्नी जो है ना वो कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई मैं आखिर क्यों इस चेहरे पर आया, तो वो जल्दी से गायब हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे. और एक्नी तो क्या, एक्नी के निशानात खत्म हो जाएंगे, यानी पाड़ ही पटजी वेंदर. तो एक्नी अगर तां खत्म करना चाहियो था, दाना तां खत्म करना चाहियो था, तो तां डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो इस्तेमाल लाजमी करे ॾिसजो. उन खां अलावा असां मूव कयूं था बाबा, अगर तव्हां वाइट एज जो साबुण इस्तेमाल करण चाहियो था, त तव्हां वटि वाइट एज जो ब्यूटी सोप मौजूद आहे. ऐं वाइट एज जो ब्यूटी सोप जेको आहे, उहो वाइट एज ब्यूटी क्रीम जो सफ़ा डिटो कॉपी आहे, सेम टू सेम आहिनि. यानी कि अगर जहिड़े तरीक़े सां वाइट एज ब्यूटी क्रीम खे तयार कयो वियो आहे, तीअं ई वाइट एज जो ब्यूटी सोप बि तयार कयो वियो आहे. वाइट एज ब्यूटी क्रीम जे अंदर बि एवोकाडो आहे, वाइट एज ब्यूटी सोप जे अंदर बि एवोकाडो आहे. वाइट एज ब्यूटी क्रीम जे अंदर बि एलोवेरा आहे, त वाइट एज ब्यूटी सोप जे अंदर बि एलोवेरा आहे. वाइट एज ब्यूटी क्रीम जे अंदर बि मिल्क आहे, त वाइट एज ब्यूटी सोप जे अंदर बि मिल्क आहे. सफ़ा मतलब हिक ई सेम तरह सां तयार थियल आहिनि, तव्हांखे रिज़ल्ट बि सफ़ा वी आई पी ॾियण वारा आहिनि. त जेके माण्हू साबुण इस्तेमाल कंदा आहिनि, त हू वाइट एज जो ब्यूटी सोप लॻाए सघो था. तव्हांजी स्किन फ्रेश थी वेंदी, तव्हांजी स्किन हेल्दी रहंदी, ऐं तव्हांजी स्किन ते ग्लो ई ग्लो हूंदो. उन खां अलावा अगरि तव्हां चओ था त बाबा असां साबुण न आहियूं, त ॻाल्हि सिधी आहे, असां फेस वॉश आणंदा आहियूं, त बाबा टेंशन

फिर ये चाचा खालिद कहते हैं दोनों में से, अच्छा आपने पूछा है कि आप कौन सी वाली लगाएं, तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोगों की स्किन के मुताबिक। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों की स्किन कैसी है, तो मैं आप लोगों को दोनों प्रोडक्ट के बारे में बता देती हूँ ताकि आप लोग सिलेक्ट कर सके कि कौन सा प्रोडक्ट हमारी स्किन के मुताबिक है, कौन सा प्रोडक्ट हमारे चेहरे के ऊपर सूट कर सकता है। तो वो आप प्रोडक्ट जो है ना वो इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। और इसके साथ साथ मोहम्मद जमान कहते हैं टॉपिक आंसर, ऐसा नहीं है मोहम्मद जमान भाई, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, आपको गलत लग रहा है। सैयदा बुखारी हमारे साथ कहती है सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम मोहतरमान जनाब, क्या हाल, सलामत रहे, या रब अल्लाह बच्चे करे, आमीन। मां का दर्स लेना है जाते हैं, सैयदा बुखारी राय जी बहुत बढ़िया। और कहती है आई मिस यू सो मच, वेलकम कहा जाता है प्यारी को। ओके जी, इकबाल आशरी हमें मीरपुर खास का जवाब है इटली के, आबिद ब्रोई हमें सिद्रा, मैं हैप्पी गर्ल ही हूँ, मैंने दूसरे मोबाइल से मैसेज कर रही हूँ कि आपने कल दूसरी आईडी से मैसेज किया था, वेलकम कहा जाता है आपको। और इखलाक भाई कहते हैं छोजो इटली जा मानू अमीर आयन खाइंदा गरीब आयन पिज्जा। अच्छा वो बस बना के लोग, वैसे ये चीज है कि जहाँ पे जो चीज ज्यादा वहाँ वो उस चीज से उकता जाता है।

बार वाइटेज का कौन सा प्लान? अच्छा साजिद नाइस है, शमन का गाना मैं ठीक हूँ, आप बताएं आपके साथ हैं, आप हमारा शो सुन रहे हैं जी, आपको भी वेलकम सर आबिद रसूल की तरफ से वालेकुम अस्सलाम। कश्मीर से एक लाख भाई ने टॉपिक का जवाब दिया है जो कि आप समझ गए होंगे कि आपका गलत जवाब है। अच्छा मेरे पर जबरदस्त है हाँ ना उठ हाजी तिलक झंडो मरी खां कुर्बान अली खास के लिए बाजी कॉल सिस्टम रखे सॉन्ग अला दिनो जुनेजो का सुनाइएगा, कोशिश करती हूँ आपकी पसंद का गाना लगाएंगे। अच्छा अच्छा खाली जुनेजो के ओके ओके ओके मैं लास्ट में आपको बताकर जाऊंगी कि किसका जवाब जो था वो असल सही था। और हमारे साथ ही चाचा खाली जुनी जो आपने गाना लिखा लगाने की कोशिश करेंगे जी। और उसके अलावा आबिद रसूल आबादी सबनी दोस्तों के सलाम सा अर्ज कयो नो हलाए जो किस क्यांदी तांसी पसंद जो प्रोग्राम बुधो पया जमान भाई पूछ क्या दे। और अब आप अपनी बुआ जी को चिढ़ा रहे हैं, चाहता है जनाब न्यूज ब्रेक का उसके ब्रेक भी होने वाले हैं, जल्दी पास आएंगे।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: क्रीम। आप सुनेंगे जीएफएम

0: मिलेनियम मॉल वालों तैयार हो, किस्त के पास आ गया है एक जबरदस्त ऑफर के साथ।
1: लालपुर के नाल है सिंध में पानी कोर्ट खिलाफ एहतजाज अवानी अगवाणन चो तो पंजाब पारा गैर कानूनी तौर ठाहिल जलालपुर के नाल बंद करे पानी डिनो।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क KTN
1: मटो आवाज भी मिलते रहो GAFM 91.6।
2: यार ही गोडन जो सूर ऐं चेल जो सूर त मुझी जान ही करी छॾी आहे। हलण विहण हर कम ॾुखियो लॻे थो।
3: त पोइ छा अञा ताईं फ़क़ीरी एनल जैसे क्रीम इस्तेमाल न कई अथई?
2: छा वाकई फ़ाइदो करे थी?
3: कुदरती जुज़नि सां तयारी ऐं मुतासिर जे नसनि जी छिक ऐं मदद करे दिलि जो सूर हुजे, गोडनि जो सूर, कंध ऐं कुलनि जी तकलीफ़ या वर्ज़िश खां पोइ छिक हर हीम साथी फ़क़ीरी एनल जैसे क्रीम
2: इस्तेमाल कीअं कजे?
3: रुगो मुतासिर हंध ते ॾींहं में 3-4 भेरा नरमी सां लॻाए ऐं आराम जो अहसास वठ ऐं ॿुध, जेकॾहिं उमिरि त फ़क़ीरी एड खणी वञा।
2: वाह, पोइ अॼु ई वठी।

को भी पता हो। तो आज मैंने आप लोगों से पूछा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पिज्जा किस शहर के लोग खाते हैं, यानी कि कौन सा शहर है जहाँ पर पिज्जा जो है वो सबसे ज्यादा खाया जाए। ओके बताइए और शामली प्रोग पर आप मुझे ज्वाइन करते जाएंगे। ओके जी, तो यहाँ पर हम जब दूसरे घंटे में आ चुके हैं तो आपको पता है कि दूसरे घंटा है तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में आपको बताएंगे और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन फेस वॉश के बारे में बताएंगे। दिल वनी कयो बाबा, दिल नडी न कयो, तव्हांखे बिल्कुल ॿुधाए छॾी नासी त तव्हांखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कंदा त तव्हांजी खूबसूरत थी सघे थी। ऐं उन खां अलावा कुझु माण्हू वाकई अहिड़ा हूंदा आहिनि जंहिंखे न इहा ख़बर न हूंदी त असांजी स्किन सेंसिटिव आहे, मतिलब उन्हनि खे इहा ख़बर न हूंदी उन सेंसिटिव स्किन जे मथां हू तरह तरह जा प्रोडक्ट इस्तेमाल पिया कंदा आहिनि। ऐं इस्तेमाल करण जी वजह सां त हुननि जी स्किन जेका न हमेशा ख़राब रहंदी आहे। तयार थियल आहे मेडिकेटेड फार्मूलो आहे, डॉक्टर्स जी निगरानी जे अंदरि बिल्कुलु हिननि खे डॉक्टर्स खे विहारे करे तयार कराई आहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे अंदरि वाइटमिन ई बीड्स आहिनि, माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन आहे, उन खां अलावा तव्हांखे रिज़ल्ट ॾींदी डी स्किन ब्यूटी क्रीम सिर्फ़ ॿ रातिनि जे इस्तेमाल में। छा त समझो चौक जी वई न, बिल्कुलु डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी इहा ॻाल्हि मूंखे ॾाढी वणंदी आहे त तव्हांखे वेट न कराईंदी बाबा, तव्हांखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम सिर्फ़ ॿिनि रातिनि जे अंदरि रिज़ल्ट ॾींदी। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जॾहिं तव्हां इस्तेमाल कंदा आहियो त तव्हांखे इहा बि ख़बर हुजे त दो दिनो में जवाब को रिज़ल्ट दे तब आप लोग ये ना समझे कि बस जो हमें रिजल्ट मिल गया तो ये अगर हम प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना छोड़ देंगे तो हमारी खूबसूरती कहीं गायब हो जाएगी, ऐसा भी नहीं होगा। जो आपको खूबसूरती मिल गई है वो बस आप ही की है, आप रख लें। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि सिर्फ दो दिनों में आपको वाजे नतीज दे रही है, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक नाइट क्रीम है तो इसे आप रात के टाइम इस्तेमाल कीजिएगा। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर और भी बहुत सारी चीजें ऐड की गई है जैसे कि अल्फा आर्बुटीन, गॉजिक एसिड, ग्लूटाथायोन, इस तरह जो है ना ये तमाम चीजें अगर आपकी स्किन के ऊपर आती है रात भर आपके चेहरे पर जब मौजूद रहती है तो आपके जल्द को चमकदार बनाती है, डार्क सर्कल्स हों या फिर आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा निशानात आ चुके हैं या फिर आपकी रंगत जो है वो बड़ी सांवली सी हो चुकी है तो ये तमाम चीजें जो है वो खत्म हो जाती है। और उसके अलावा आपके चेहरे पर नमी फराहम कर देगा और जल्द को गहराई से मॉइस्चराइज करके चमकदार बनाने के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी जल्द अगर किसी भी तरह की हो, यानी कि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव हो, ऑयली हो, ड्राई हो, नॉर्मल हो, कॉम्बिनेशन टाइप हो, हर तरह की स्किन के मुताबिक डी स्किन ब्यूटी क्रीम को तैयार किया गया है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लाजमी ट्राई करके देखिएगा, इसे लड़के लड़कियां सब ही लगाएंगे, नी जो हकान खूबसूरत थियण सो तव्हां सभु ई लॻाए जो मर्द मायूं सभु। डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठो था त डी स्किन ब्यूटी क्रीम सां गॾु तव्हां डी स्किन फेस वॉश खे न विसारजो बाबा, न त रोईंदो वीचारो। डी स्किन वॉश बि तव्हांजे लाइ आहे, डी स्किन फेस वॉश जी ॻाल्हि कई वञे त डी स्किन फेस वॉश जेको आहे हायलोरोनिक एसिड सीरम सां तयार थियल आहे, जेको एतिरो ज़बरदस्त सीरम हूंदो आहे तव्हांजी स्किन जे अंदरि वेंदो आहे त तव्हांजी स्किन खे हाइड्रेट कंदो आहे, तव्हांजी स्किन खे क्लीन कंदो आहे, मॉइस्चराइज कंदो आहे ऐं डीपली तव्हांजी स्किन जे अंदरि तक वञी तव्हांखे ग्लो ॾींदो आहे। सो डी स्किन अगरि तव्हां फेस वॉश लॻायो पिया त तव्हां ख़ुशि थी वञो छो त तव्हां वटि हाणे तमामु ज़बरदस्त फेस वॉश अवेलेबल आहे। हीउ तमामु जेके प्रोडक्ट आहिनि, यानी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आहे ऐं डी स्किन फेस वॉश आहे, हीउ प्रीमियम क्वालिटी वारा प्रोडक्ट आहिनि जे तव्हां इस्तेमालु कंदा त तव्हांखे ख़बर पवंदी त तव्हां वाक़ई केॾा सुठा प्रोडक्ट इस्तेमालु करणु शुरू कया आहिनि। ओके जी, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम हणो ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम सां गॾु तव्हां डी स्किन फेस वॉश हणो, सफ़ा का टेंशन जी ॻाल्हि कोन्हे बाबा, सफ़ा वी आई पी ऐं स्किन फ्रेंडली प्रोडक्ट आहिनि। उन खां अलावा अगरि तव्हां पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल कराइण चाहियो था त पोइ तव्हां डायल कंदा 03-12-50-25-907 ऐं ॿियो नंबर आहे, अगरि हीउ नंबर नथो मिले त ॿियो नंबर आहे 03-32-73-84-309 03-32-73-84-309

ये नंबर आप डायल करेंगे और आपको बताया जाएगा, गाइड किया जाएगा कि आप कहाँ से जाकर परचेज कर सकते हैं, आपके एरिया में कहाँ मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, तो वो अवेलेबल करा देंगे। तो जल्दी से इस नंबर के ऊपर रابطہ कीजिए ताकि उन्हें पता चले कि भाईजान कितने सारे प्यारे लोग हैं जो प्यारा बनना चाहते हैं और उनके एरिया में नहीं अवेलेबल दी स्किन ब्यूटी क्रीम। ये तो सरासर नाइंसाफी हो, तो अवेलेबल कराइए, थोड़ी सी मदद कीजिए और उसके अलावा खूबसूरत हो जाए। तो जनाब यहाँ पर गाना लगाया है जिसकी फरमाइश मुझे 2-3 दिनों से अरीबा कर रही थी।

है साईं छा इहो मुमकिन आहे आहे आहे प्रोग्राम सुन रहे हैं वाइटेश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। अच्छा हमारे साथ यहाँ पर पैनल की जाने बातें हैं तो कौन कौन मौजूद हैं। अरिबा कहती है ओ मेरी प्यारी आपी

अच्छा आबिद रसूल जेको भाषा के बुध पयो ता बरकत भट जो गानो हो बरकत भट मुखे कोन मिलियो तो अगर वो सेम सिंगर आए तो मुखे बुधाय तो आज ला गानो हलाइंदासी समझो ता मां थोड़ी सिंधी सिंगर्स में मां कंफ्यूज आया छो तो मेरा साबुन स्लो है अच्छा उनके अलावा गुलशेर बाबर एंड मुजम्मिल बाबर विलेज अला वरायो बाबर से असुद मौजूद आज सो भाईरन जो मोहब्बत प्रोग्राम बुध पाया मैसेज शायद तुम मिसिंग पार्ट थी वो है और ये मौजूद है सलाम अलैकुम सिदरा मुस्कान कड़ा हाल है तवाजा फौजी पठान खान खोसो है सिदरा गानों लिखो डेडिकेट किया हसीना सूमरो के डॉक्टर हसीना सूमरो के ओके अच्छा इरम कहती है प्यारी

ओके जी, सोनी कहती आप ही जान में भी आ गई, आप ही सुबह कब होगी, आप ही कल के दिन का बेसब्री से वेट कर रही हूँ। अगर आप इंतजार करें तो आपको आज का दिन बहुत बड़ा लगेगा, गुजरेगा ही नहीं। चाहती है तो बस थोड़ा सो जाए क्योंकि मुझे ये लगता है कि जब मैं ऐसा लगता है कि मैं किसी चीज का वेट कर रही हूँ लेकिन मेरा दिन नहीं गुजरा तो फिर मैं सो जाती हूँ। सोने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हाँ जी अब जो वक्त है वो तेजी से गुजर गया है। और शायद बबर की आवाज में हमने यहाँ पर गाना लगा लिया है, शाह जमाने मूसा घट गई हुई जो तू भी निकली आए।

0: वरी प्रोग्राम आहे वाइटिश एंड डीस्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड कयो वने पयो बाबा वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डीस्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जे तावन सभी डीस्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो पया या करंट आयो था तो तमाल लाजमी इस्तेमाल करी दिसो डीस्किन ब्यूटी क्रीम जे का है
1: सारी दुनिया खा वधी
0: एतरी जबरदस्त क्रीम थवा अगर तमा इस्तेमाल करी दिसना ता के खबर पेजी वेंदी एक त मेडिकेटेड फार्मूलो आहे बयो त डॉक्टर जी निगरानी जे अंदर तैयार थेल आहे टियों त बिन दिन में ता के रिजल्ट दींदी ए चौथो त सब इन जे अंदर जे के चीजों ऐड थेल आन वे सब तमा जे स्किन जे लाए जरूरी आहे तो ये सब चीजों जडे मिली करे तमा के निखार दिंदो तमा के रिजल्ट मिलंदो तो तमा खुश थी वेंदा तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो ए गड तमा डी स्किन जो फेस वॉश भी वठी सगो था तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम हणो ए डी स्किन फेस वॉश हणो नथा मिलन त जे के नंबर बुधाय दो न ते राबतो करी वठो।

Yes, yes. Galat gala. Okay, Abid bhai, ma samjhi gayi. I'm theek aaye. Thank you so much. हाँ वो आपने जी कास्ट होंडी ना करी करी माँ वाकई ऐडा कम करी वेंडी है जो पानी खिले इंडिया है अच्छा ये हमारी साथ हैं जी हैप्पी गर्ल आपको वेलकम कहा जाता है और ये रुखसार मरी हमारे साथ कहती है सलाम अलैकुम सिद्रा आप ही क्या हाल हैं आपके आपका शो सुन रहे हैं आप ही अच्छा कहती है कि मैं अभी 16 साल की हूँ तो मैं ब्यूटी क्रीम नहीं लगाती लेकिन हाँ

फेस वॉश लिया है, अम्मी और सिस्टर यूज कर रहे हैं, अच्छा रिजल्ट है। रुखसार मरी मेरे पर खास से, क्या बात है, आपको खुशहाली कहा जाता है। वैसे कौन सा फेस वॉश लिया है, वाइट इसका या डी स्किन का?

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी 1.6 जो
1: पीएम। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
2: हेमे डायमंड ग्लो, जो डीप क्लीन करे और दे चार गुना ब्राइटनेस, चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
4: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
5: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिंडी हन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
6: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदार।

करीबी जनरल स्टोर्स पर मिलने चाहिए। उसके अलावा अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे करीबी जनरल स्टोर्स पर भी मिले तो आपके लिए नवा सके और आपको आसानी हो, अगर अभी अवेलेबल कराना है जनाब 03-12-50-25-907 या फिर दूसरा नंबर है 03-32-73-84-309। ये नंबर है जो कि आपकी आसानी के मुताबिक है ताकि आप इन्हें डायल कर सके और इनसे मालूमात ले सके, वो मालूमात जो आप लोगों को शायद मुझसे नहीं मिलती। और इसके साथ साथ अगर आप भी अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो जल्दी से अवेलेबल कराइए, और अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल कराइए, दिन आप इस्तेमाल कीजिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की अगर हम बात करें तो

हाय क्या बात है जी। डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप भी इस्तेमाल करेंगे तो जरूर कीजिएगा। डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में ये बात भी है कि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो ये फुल मेडिकेटेड फार्मूला है, यानी कि इसे इस्तेमाल करते साथ आप लोगों को ये नहीं लगेगा कि भाई आप कोई ऐसा प्रोडक्ट लगा रहे हैं जिसे लगाने के बाद आपकी स्किन मजीद खराब हो चुकी है। ना बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं होगा, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार किया हुआ प्रोडक्ट आप बेफिक्र होकर लगा सकते हैं, चाहे आपकी स्किन कितनी सेंसिटिव क्यों ना हो। क्रीम के साथ आप डी स्किन फेस वॉश का भी इंतखाब करेंगे, दोनों चीजें साथ में लगाइएगा। इसी के साथ साथ मैंने जहाँ पर आप लोगों से जो सवाल पूछा है टॉपिक प्रोग्राम का, ये है कि आप मुझे बताएं कि दुनिया में सबसे ज्यादा पिज्जा जो है वो किस शहर में खाया जाता है, किस शहर के लोग जो है वो सबसे ज्यादा पिज्जा खाते हैं, और उसके साथ साथ

ये गाना डेडिकेट जाता है अली मुर्तजा के नाम। जी अली मुर्तजा ने जो चौपे का जवाब दिया था वो बड़ा वखरा दिया था, लेकिन क्या ही बात की आपके जो कमेंट है वो ऊपर चले गए। वैसे वो ड्रामा में ड्रामे की थोड़ी सी क्लिप देखी थी, पता चला था कि वाकई डिलीवरी बॉय होता है उस पर उसका दिल आ जाता है। सही है भाई, शुरू करें अभी नेकी और पूछ नजीबुल्ला बिरोही हमें सुन।

अरे भाई जवाब बताने कितनी जल्दी क्या है बताऊंगी, अभी तो टाइम पड़ा है, रुको जरा सब्र करो। यूनिस कोड़ो हमें सुन रही है, कहते हाय अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। रमजान लिखते हैं कि कहते तो जो दिल क्या चीज है, जान भी लुटा देंगे। आज कहते हैं छोड़ दो हाथ, मेरी इज्जत का सवाल है। वाह साईं वाह। अच्छा ये किशोर भाई हमारे साथ, कहते सलाम अदा की आयो, खुश चाक चंगा भला डियो, खबर सब खैर ता है, सब खैर मजे में ता बुदा घुमी फिरी मजा करी आयो। अच्छा दर्दे दिल कहती है चंदा कल से इतनी सीरियस बातें क्यों कर रही हैं। नहीं मैं तो ठीक ठाक हूँ, वैसे क्या है कि कभी कभार इंसान को थोड़ा सीरियस भी होना चाहिए। और ये मैंने गाना लगाया है जी बरकत अली की आवाज में।

ओके जी कारी वगे सा दिला पांसी उनडी मैकड़ी रील दिठी जे में एकड़ो मानू चे पियो त चवन था त कारो वगो लहे न थो असायो जे की कारो वगो ठहे न थो वा चीज वाकई थोड़ी लगी त कुछ कुछ मानन के कारो वगो वाकई नाय ठन कुछ मानन के वरी दाडू ठंदो वा सो गाल ते ठन जी नाय पर कुछ मानु वरी आशकी जे तौर ते कारो वगो पाइंदा है सो खैर कारो वगो पाइण जो शौक थियो त डी स्किन ब्यूटी क्रीम लाज़मी हण जो ठीक आहे तव्हांखे टे कारो वगो ओके जी डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांखे मिले थी गॾु तव्हांखे डी स्किन जो फेस वॉश बि मिले थो हाणे तव्हां ते आहे त तव्हां ॿई चीजूं लॻायो था या जेका दिलि चवे तव्हांजी सा तव्हां लॻाए सघो था और किशोर भाई कहते अदा घबरान आऊं आ गया हूं भलो कयो अथव भलो कयो अथव और हेंजी हमारे साथ ये हैप्पी गर्ल क्या कहती है मैं आपके शो की दीवानी हूँ मतलब आपके लिए पागल हूँ सच्ची बताएं अच्छा ए मंसारी कहती ऑरेंज कलर वाली ये ना करे भाई दिल को संभाल के रखे सर

साजा कहते हैं डी स्किन क्रीम का फेस वॉश कमाल, यू कैन सी इन माय डीपी। ओ वाह वाह वाह वाह चाचा, बाबा डी स्किन जो फेस। अच्छा हैप्पी गर्ल कहती है मैं कभी कभी आपको मैसेज, तो आप समझ जाना कि मैं आप ही हो पा रही, लेकिन आप समझ लेना कि मैं आपका शो सुनती हूँ। ओके जी ओके, हम समझ लेंगे और बहुत शुक्रिया। और स्टोर पर क्रीम और डी स्किन का फेस वॉश अवेलेबल हो तो जो नंबर आपको बता रहे हैं उनके ऊपर रब्ता किया करें, कॉल या फिर एक छोटा सा मैसेज छोड़ दिया करें, उनको बताएं कि भाई आप कहाँ से हैं और आप शो सुनते हैं, आपके एरिया में नहीं मिलते ये प्रोडक्ट, तो वो अवेलेबल करा देंगे, उनके लिए भी आसानी हो जाएगी और आपके लिए भी आसानी हो जाएगी। तो थोड़ा सा आप जो है ना कोशिश करें कि ये नंबर जो आपको बताए जा रहे हैं उनके ऊपर रब्ता करें, कॉल या फिर मैसेज आप जरूर किया करें। और सोनी कहती आप ही वाह साई वाह वाह साई वाह, यानी फुल मजे में एंजॉय करना। और ये अदी सिद्रा में आफ्ताब अहमद मक्सी, अदी प्लीज सॉन्ग फायजा अली का सुनाइएगा मिल सुहना, डेडिकेट आपने किया है मेरी जान ए के नाम। चले ये गाना अगर अभी नहीं चल सका, वैसे अभी नहीं चलेगा, 5 बजे वाले प्रोग्राम में आपको सुनाऊंगी, ठीक है, आप 5 बजे मुझे ज्वाइन कीजिएगा। अच्छा वरियाम अली जतो, हाँ सोनी मैं समझ गई। और विलेज मोहम्मद पंजल शर से ममताज अली शर के वीआईपी प्रोग्राम हले पयो तमाजो, थैंक यू भा।

जी ना, मैं आपको कहीं से भी जाएंगी तो आपको मिल जाएगा। और उसके अलावा जी जी बिल्कुल सवाल का जवाब बताती हूँ। और इखलाक भाई कहते हैं जी स्किन का क्या कमाल है। जी जी शायद कुछ ऐसा ही सीन है, लेकिन आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। किशोर भाई कहते हैं खुद को आजमा के हम नहीं रोएंगे। भाई रोना भी नहीं चाहिए, खुद को आजमा के क्यों ही रोएंगे। कुछ बातें वाकई ऐसी होती हैं जो समझ नहीं आती और हम हैं के ओके। सो मैंने जो आज आप लोगों से सवाल पूछा था कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो पिज्जा है वो किस शहर के लोग सबसे ज्यादा खाते हैं, तो उसका सही जवाब है न्यूयॉर्क। वो पिज्जा सबसे ज्यादा खाते हैं दुनिया में, मतलब एक ऐसा सिटी बन चुका है न्यूयॉर्क जो दुनिया में सबसे ज्यादा पिज्जा खाने वाला जो ना वो सिटी है, तो न्यूयॉर्क इसका सही जवाब है। होंगे कि किसने सही दिया किसने नहीं। ओके इसी के साथ यहाँ पर टाइम भी हो जाता है कि आप लोगों से इजाजत ली जाए, हमारे जाने का वक्त आ चुका है ना, क्या करें।

0: छड़ी अदालत री सोनी पारस लिया दिलवाणी बेन के पुलिस रा पंजाब के मुख्तलिफ शहर में चौमासे जा वसकारा जारी लाहौर सरगोदा हाफिजाबाद विहाड़े ए बेन शहर में बरसात मुख्तलिफ रोडन ते गोडे जेडो पानी बीठल शहरी परेशान नसीराबाद में अवामी तहरीक जो जलालपुर केनाल ए सिंध में पानी खोट खिलाफ एहतजाज अवामी तहरीक के कारकुनन गोठ मिठल खान चांडियो खान सिम शाख ताई रैली कढ़ी अगवान चयो तो पंजाब पारा गैर कानूनी तौर ठायल जलालपुर केनाल बंद करे सिंध के हिस्से जो पानी दिनो वने।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: यार कुछ डीन खा चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ आया साबी दर्द इतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो।
4: तो पोइ तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो न तो करी?
3: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा?
4: बिल्कुल, फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सा जज़ब थी सूर आए सोडियम आराम पहुँचाण में मदद दे थी।
3: सिर्फ चेल ऐ सूर लाए?
4: ना दा, आसाबन जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध आए चेल जी तकलीफ, सट, धक लगण, पुराणन जख्म जे सूर आए चमड़ी जे जलन लाए भी फायदेमंद आहे।
3: इस्तेमाल किए कजे?
4: मुतासिर थियल हंध ते डीह में ब खां टे भेरा नरमी सा लगायो आए आराम जो एहसास हासिल करियो। जी हाँ, फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम, हर रोज हर कदम। अड़ी वेजे स्टोर ता नालो वठी खरीद करियो फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
5: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

नाहे कयो। ईरान गानिन लाइ संजीदा आहे, मुआहिदो करण नथो चाहे। तहरान सां राब्ता जारी आहिनि, नतीजनि जो इंतज़ार आहे। सऊदी अरब खे इब्राहिम मुआहिदे जो मेंबर हुअण खपे। सऊदी अरब इब्राहिम मुआहिदे जो हिसो न बणजंदो त एटमी मुआहिदो न कंदासीं। ट्रम्प जे चीन ऐं रूस खे ईरान खे हथियार फराहम करण ते संगीन नतीजा भोगण जी बि धमकी। सऊदी इतिहादी फौज पारां यमन जे अल हुदीदा बंदरगाह ते हमले जी तस्दीक। सऊदी इतिहादी फौज चयो आहे त यमन जे अल हुदीदा बंदरगाह में हूसी फौजी ठिकाणनि स्टेट जक हंधनि खे निशानो बणायो। अल हुदीदा बंदरगाह खे निशानो नाहे बणायो। समूरियूं बंदरगाहूं जहाज़नि जे अच वञ लाइ खुलियल आहिनि। सिंध में बदमनी ऐं करप्शन चोट चढ़ियल आहे। कराची समेत सूबे जा शहर खंडर बणियल आहिनि। कराचीअ खे बि 18 सालनि दौरान तबाह कयो वियो आहे। हेठी सतह ताईं इख़्तियारनि जी मुंतकिली लाइ सभु आइनी रस्ता इस्तेमालु कंदासीं। वफ़ाक़ी वर सिंध ॿार स्कूलनि खां ॿाहिरि आहिनि। मुगवी ॿारनि जी बाज़ बि लंदा वसाया विया। सिंध मां लुटियल पैसो दुबई में लॻायो वियो, जंहिं सबबि दुबई में मिल्कियतूं महांगियूं थियूं। बलूचिस्तान जे मस्कोंग वारे इलाइक़े में सिक्योरिटी फोर्सिस जो ऑपरेशन अर्ज़न जारी। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिब मुख़्तलिफ़ कार्रवाइयुनि दौरान दहशतगर्दनि जा केतिरा ई ताक तबाह कया विया आहिनि। ऑपरेशन अर्ज़न दौरान मारिजी वियल दहशतगर्दनि जो अंग बि वधी 13 थी वियो आहे। हुकूमत लाॻीतो 5 ॾींहनि में वाधि करे छॾी। पेट्रोल 3.66 रुपया ऐं डीज़ल 4.80 रुपया फी लीटर, 9.18 पैसा ऐं डीज़ल जी नई क़ीमत 83.46 रुपया फी लीटर थी वई। नवा अघ 24 कलाकनि लाइ लागू हूंदा। HIV जो गणती जोगो फैलाउ, एचआईवी वायरस जे पखेड़ जो सबब बणजण लॻियूं। वलिका इस्पताल खां पोइ सोशल सिक्योरिटी इस्पताल लांडीअ मां बि HIV जा केस ज़ाहिर। 4 महीननि खां 8 वरनि जे उमिरि ताईं जे 15 ॿारनि में HIV जी तस्दीक। जनवरी में 4, फेबरवरी में 2, मार्च में 1, अप्रैल में 5 HIV केस रिपोर्ट थिया। मामले खे दॿाइण जी कोशिश कई वई। वधीक केस ज़ाहिर थियण जो ख़दशो। ज़रियनि मूजिब HIV मुतासिर ॿारनि जो इलाज सोशल सिक्योरिटी इस्पताल लांडी में थियो। वलिका इस्पताल में 78 ॿारनि में HIV जा केस ज़ाहिर थिया हुआ। 9 ॿार HIV सबब फोत थी चुका आहिनि। हैदराबाद में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जी चटाभेटी इम्तिहाननि में मुबैना पंहिंजा नवागदी मुतासिर उमेदवारनि ऐं शागिर्दनि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन मुतासिर उमेदवारनि सां गॾु बि शागिर्द। खैरपुर जी अदालत में प्रिया समेत ॿियनि मुगवी ॿारनि जी बाज़ियाबी लाइ लॻल धरणे ते तशद ऐं गिरफ़्तारियुनि ख़िलाफ़ दाख़िल दरख़्वास्त ते ॿुधणी। सोणी पारस लियाकत जलबाणी ऐं ॿियनि जी आज़ादी बाद वकीलनि दरख़्वास्त वापसि वठी छॾी। अदालत दरख़्वास्त वापसि वठण ते उकलाए छॾी। सोणी पारस लियाकत जलबाणी ऐं ॿियनि खे पुलिस रात देर सां आज़ाद कयो हो। पंजाब जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में चौमासे जा वसकारा जारी। लाहौर, सरगोदा, हाफिज़ाबाद, विहाड़े ऐं ॿियनि शहरनि में बरसाति। मुख़्तलिफ़ रोडनि ते गोॾे जहिड़ो पाणी बीठल, शहरी परेशान। नसीराबाद में अवामी तहरीक जो जलालपुर कैनाल ऐं सिंध में पाणी खोट ख़िलाफ़ एहतजाज। अवामी तहरीक जे कारकुननि ॻोठ मिठल खान चांडियो खां सिम शाख ताईं रैली कढी। अॻवाननि चयो त पंजाब पारां गैर क़ानूनी तौर ठाहियल जलालपुर कैनाल बंदि करे ॾिनो वञे। अहमदाबाद में ट्रक ड्राइवरनि जो मोटरवे पुलिस

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: देखिए राशि उल्फत 7 अप्रैल से मंगल की रातें सिर्फ जियो पर।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जी एफ एम, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: Yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल शिकार 4 नवंबर से हफ्ता और इतवार रात 7 बजे
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: yeah!

0: देखिए सियानी रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: एक सऊदी इतिहादी फौज चयो है तो यमन जी अलहदेदा गवर्नरेट में हुसी फौजी ठिकाणन स्ट्रेटजिक हंधन के निशानो बणायो वियो। अलहदेदा बंदरगाह के निशानो नाहे बणायो। समूरी बंदरगाहों जहाजन जे अचण लाइ खुलियल आहिनि।

सिंध में बदअमनी ऐं करप्शन चोट चढ़ियल आहे। कराची समेत सूबे जा शहर खंडर बणिजी विया आहिनि। कराचीअ खे बि अठनि सालनि दौरान तबाह कयो वियो। हेठी सतह ताईं अख़्तियारनि जी मुंतकिली लाइ सभु आइनी रस्ता इस्तेमाल कंदासीं। वफ़ाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल चयो आहे त सिंध में 2.6 करोड़ ॿार स्कूलनि खां ॿाहिरि आहिनि। मुगवी ॿारनि जी बाज़ियाबी लाइ एहतजाज कंदड़ माइरनि ते बि डंडा वसाया विया। सिंध मां लुटियल पैसो दुबई में लॻायो वियो, जंहिं

जी चटाभेटी इम्तिहानन में मुबैना पांजा नवाजी खिलाफ शागिर्दन जो बे डी बे एहतजाज जारी मुतासिन पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस सामू कायम कैल कैंप ते रात गुजारी एहतजाज में मुतासिर उम्मीदवार से गड शागिर्द भी शरीक।

0: यार ही गोडन जो सूर है चेल जो सूर तो मुझे जान ही करी छड़ी है। हलण वेहण हर कम दुख्यो लगे थो।
1: तो पोई छा अन्या तई फकीरी एनल्जेसिक क्रीम इस्तेमाल न कई थी?
0: न यार, छा वाकई फायदो करे थी?
1: बिल्कुल अदा, कुदरती जुजन सा तैयार कयल फकीरी एनल्जेसिक क्रीम मुतासिर हंद ते जल्दी जज़ब थी। सूर सोडिय जिस्म जी नसन जी छिक आई अकराहट मां आराम पहुंचाण में मदद करे थी। चेल जो सूर हो सूर कंध आई कुलन जी तकलीफ या वर्जिश का पोए छिक हर हालत में बेहतरीन साथी। फकीरी एनल्जेसिक क्रीम
0: इस्तेमाल किए कजे
1: रुगो मुतासिर हंद ते डीह में 3-4 भेरा नरमी सा लगाए आई आराम जो एहसास वच आई बुध जेकरे उमरे या हज ते वणण जो इरादो थई त फकीरी एनल्जेसिक क्रीम जरूर पाणस जैसे क्रीम
2: है। कलंदर लाल शहबाज
3: उसी खित्ते की
2: नेटवर्क।

0: मैकरीनो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: जेएनसी की तहरीक आडो गोरा फोड़े छड़ा, भारत जो तालीम वारो वजीर मुस्तफी, नौजवानों जो जंतर मंतर ते जश्न। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुस्तफी थियल वजीर धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा मंजूर करे वरती। तालीम वाले वजीर की इस्तीफा जो बुधी दिल्ली के जंतर मंतर पार्क में वेठल जयंती जो जश्न। काकरोच जनता पार्टी तालीम वाले वजीर की इस्तीफा ए हुकूमत से गालन बाद एहतजाज खत्म करने जो ऐलान करे छोड़।

सिंध में मेरठ जी लताड़ ऐं पंहिंजा नवाज़ी ख़िलाफ़ नौजवान सरापा एहतजाज। हैदराबाद में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जी आफ़ीस आॾो नौजवाननि जे एहतजाजी कैम्प ॿिए ॾींहुं बि जारी। नौजवाननि राति बि कैम्प ते गुज़ारी। मुतासिर उमेदवारनि चटाभेटी इम्तिहान 2024 जे नतीजनि खे रद्द करण ऐं कमीशन में सुधारनि ताईं एहतजाज जारी रखण जो ऐलान। मुज़ाहिरीन मूजिबि मुतालबनि जी मञता लाइ एहतजाजी कैम्प हिकु हफ़्ते ताईं जारी रहंदी, जंहिं बाद आईंदा जी हिकमत अमलीअ जो ऐलान कयो वेंदो। चीन पारां खिते में जारी सूरतहाल ते गणतीअ जो इज़हार। अमरीका ऐं ईरान खां मसइले जे हल लाइ जल्द ॻाल्हियूं शुरू करण जो मुतालबो। ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास राग़ची जी चीनी हमनसब वांग यी सां किर्गिस्तान में मुलाक़ात। चीनी परडे॒ही वज़ीर पारां ईरान जी ख़ुदमुख़्तियारी जी हिमायत। वांग यी चयो त इस्लामाबाद मफ़ामती यादाश्त नामो खिते में अमुन इस्तेहकाम तरफ़ वञण जो वाहिद रस्तो आहे। बीजिंग पाकिस्तान ऐं ॿियनि मुल्कनि जी टियाकड़े वारनि कोशिशुनि जी हिमायत जारी रखंदो। अब्बास राग़ची चयो त अमरीका जंगबंदी वाइदे जी भञकड़ी कंदे ईरान ते हमला कया। तहरान जे ॻाल्हियुनि वारी ख़्वाहिश बरक़रार आहे, चिंतान में वाधि न चाहियूं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जे वेझनि सलाहकारनि सां मुलाक़ात। ईरान ख़िलाफ़ वॾनि हमलनि ते गौर वीचार। सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो त ईरान ते वॾे हमले बाबति अञा फ़ैसिलो नाहे कयो। ईरान ॻाल्हि लाइ संजीदा आहे, वाइदो करण नथो चाहे। तहरान सां राब्ता जारी आहिनि, नतीजनि जो इंतज़ार आहे। सऊदी अरब खे इब्राहिम मुआदे जो मेंबर हुअण घुर्जे। सऊदी अरब इब्राहिम मुआदे जो हिसो न बणिजो त एटमी मुआदो न कंदासीं। ट्रंप जे चीन ऐं रूस खे ईरान खे हथियार फराहम करण ते संगीन नतीजा भोगण जी बि धमकी। सऊदी इतिहादी फ़ौज पारां यमन जी अल हुदैदा गवर्नरेट ते हमले जी तस्दीक। सऊदी इतिहादी फ़ौज चयो आहे त यमन जी अल हुदैदा गवर्नरेट में हूसी फ़ौजनि ठिकाणनि स्ट्रेटजिक हंधनि खे निशानो बणायो। अल हुदैदा बंदरगाह खे निशानो नाहे बणायो वियो। समूरियूं बंदरगाहूं जहाज़नि जे अचवञ लाइ खुलियल आहिनि।

सिंध में बदअमनी ऐं करप्शन चोट चढ़ियल आहे। कराची समेत सूबे जा शहर खंडर बणियल आहिनि। कराची खे बि अढ़नि सालनि दौरान तबाह कयो वियो। हेठी सतह ताईं अख़्तियारनि जी मुंतकिली लाइ सभु आइनी रस्ता इस्तेमाल कंदासीं। वफ़ाक़ी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल चयो आहे त सिंध में 6 लख ॿार स्कूलनि खां ॿाहिरि आहिनि। बाज़ार ते बि डंडा वसाया विया। सिंध मां दुबई में लॻायो वियो, जंहिं सबब दुबई में मिल्कियतूं महांगियूं थियूं आहिनि। बलोचिस्तान जे मस्तोंग वारे इलाइक़े में सिक्योरिटी फोर्स जो ऑपरेशन लज़म जारी। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिब मुख़्तलिफ़ कार्रवाइयुनि दौरान दहशतगर्दनि जा केतिरा ई थाक तबाह कया विया। ऑपरेशन लज़म दौरान मारिजी वियल दहशतगर्दनि जो अंग वधी 13 थी वियो। कराची में HIV जो गणती जोगो फैलाव। इस्पतालूं ॿारनि में HIV वायरस जी पखेड़ जो सबबु बणजण लॻियूं। वलीका इस्पताल खां पोइ सोशल सिक्योरिटी इस्पताल लांडीअ मां बि HIV जा केस ज़ाहिर। 4 महीननि खां 8 वरनि जी उमिरि ताईं जे 15 ॿारनि में HIV जी तस्दीक। जनवरीअ में 4, फेबरवरीअ में 2, मार्च में 1, अप्रैल में 5 ऐं मई में 3

एचआईवी केस रिपोर्ट थे मामले के दबाने की कोशिश कई वही एक केस जाहिर थे खदशो जरियन मूजिब एचआईवी मुतासर बार इलाज सोशल सिक्योरिटी अस्पताल लांडी में थो वलिका अस्पताल में 78 बार में एचआईवी जा केस जाहिर थे हुआ नव बार एचआईवी सबब फौत चुका है।

सिंध में अॼु खां 27 जुलाई ताईं बरसातुनि जी अॻकथी, कुझु ज़िलनि में शहरी बोर्ड जो बि ख़दशो ज़ाहिर। मौसमियात खाते मूजिब कराची, हैदराबाद, थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास, बदीन, सांगर, टंडू, मोहम्मद खान, मटियारी ऐं शहीद बेनज़ीराबाद ज़िलनि में अॼु खां 27 जुलाई ताईं किथे हल्की त किथे तेज़ बरसाति जो इम्कान आहे। इम्कानी बरसातुनि खे नज़र में रखंदे सिंध जे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह सीएम हाउस में रेन एमरजेंसी डेस्क क़ाइम करे छॾी। लाॻापियल इदारनि खे मुतहरक रहण जी हिदायत। पंजाब जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में चौमासी जा वसकारा जारी। लाहौर, सरगोधा, हाफ़िज़ाबाद, विहाड़ी ऐं ॿियनि शहरनि में बरसाति। मुख़्तलिफ़ रोडनि ते गोॾे जहिड़ो पाणी बीठल, शहरी सख़्त परेशान। शहदादकोट में कार ऐं इल्ज़ाम हेठि जवाबदार हथां भाइटी ऐं नौजवान क़तल। संजर भट्टी थाणे जे हद में जवाबदार अली बख़्श जतोई पंहिंजे भाइटी अफरोज़ ऐं इम्तियाज़ शाह खे गोलियूं हणी क़तल कयो। वाक़िए बाद जवाबदार फरार। पन्याकिल में बि औरत पनाह ख़ातून घुटारी क़तल। मक़तूल जे वेगन पुटनि ते क़तल जो इल्ज़ाम।

लखी गुलाम शाह भरसा शहर बिरादरी के बिन धुरन में झेड़े दौरान एक जनो कतल, बिन औरतुन समेत चार जना जख्मी। गोठ अरबाब शहर में घिटी के गालता झेड़े में करमला शहर मारजी वयो, औरतुन समेत जख्मी थे चैनी गोठान के अस्पताल मुंतकिल कयो वयो।

0: थाणोबुला खान भरिसां इस्पताल वेंदड़नि जी गाॾी हादसे जो शिकार, ॿिनि औरतुनि समेत टे ॼणा क़तल, टे ॼणा फौत, टे ज़ख़्मी। थाणो आरब खान रोड ते मोड़ काटींदे कार कल्टी थी, औरत ताजुल नाज़ा ऐं ताज़ो ॼावल ॿार फौत थी विया, टे ॼणा ज़ख़्मी थी पिया। पिंगरियो वेझो रोड हादसो, ॻोठ अली खान वासी इमरान अहमदाणी फौत थी वियो। मुरीद शाह भरिसां किरेन जो मोटरसाइकिल खे टकर, औरत समेत टे ॼणा फौत। क़ौमी शाहराह ते माछी ॻोठ वटि हादसे में बशीरा, शफ़ाउल्ला ऐं मोहम्मद मुज़म्मिल फौत थी विया। मीरपुर माथेलो जी अदालत बिजली जी गैर ऐलानिया लोड शेडिंग ते सेपको जे एलएस खे हथकड़ियूं हणाए छॾियूं। सेकंड एडिशनल सेशन जज मीरपुर माथेलो सेपको जे एलएस अमजद नूनारी खे घुराए हथकड़ियूं हणी लॉकअप में विहारण बाद आज़ाद करे छॾियो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: GAFM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: अफार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: सुबह की चाय, फिक्का जाम, पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: Yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: GAFM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: देखिए ड्रामा सीरियल जेंटलमैन हफ्ता और इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: ये

0: कुदरती निखार
1: नीम प्रिकली
0: उस आराम करने की बखार में मदद देता है। नीम प्रिकली
1: हर अच्छे
0: जिस
2: उसी खिती है आवाज
0: GAFM नेटवर्क
2: आवाज।

0: एक चूंटी जितनी हैसियत है तुम्हारी, यू मसल के फेंक भी दूंगा ना, कोई ढूंढ नहीं पाएगा तुम।
1: अम्मी, तुम्हारे भाई ने गुनाह किया और उसकी सजा उससे मिलकर रहेगी।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: GAFM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: गम। देखिए नया ड्रामा सीरियल पागलखाना 29 जनवरी से रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: Yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: जब दिमागी नॉर्मल ना हो तो फिर कुछ नॉर्मल नहीं होता, और यही बात इसको समझ में नहीं आ रही।
1: मेरी बच्चियों के खुशियों को नजर ना लगे किसी की, बहुत दुख देखे इन्होंने दो सालों में।
2: हो गई बर्बाद में, लग गई मेरी खुशियों को आग।

0: पहले उसके भाई को मारा है तुमने, अब उस लड़की की खातिर हमें मार दो, मार दो हमें।
1: तुम नहीं जानती कि वो तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता है। सारे को तो हम खो चुके हैं, तुम्हें नहीं खोना चाहते।
2: इस लड़की को ढूंढने में उसका सुकून है, जो लड़की उसको नहीं मिलेगी खुद ही सुकून आ जाएगा उसे।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: ग्रे, चार्ल्स स्पीड और मत 9 बजे,
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: Yeah!

0: पर्दा पर्दा पर्दा, जब से रिश्ता जोड़ा है इसने तो मेरी जिंदगी अजाब बना के रखती है।
1: बस कर दो दुर्दाना, बस कर दो प्लीज।
2: खाओ मेरी कसम, तुम उसके बारे में नहीं सोचोगे।

0: आगे बर्बाद कर देगी।
1: वो अगर मुझे ना मिली तो बर्बाद हो जाऊंगा।
2: उस बेचारी का कसूर ये है कि वो शैतानों की बस्ती में अपने लिए इंसान तलाश कर रही थी।
3: बच्ची की रूह को छलनी की है, उसके पाकीज़ा किरदार पर खींचड़ उछा लिया तुम लोगों ने, कभी माफ नहीं करेगा देखना।
0: तमाशा बन गई मामा।
3: अच्छा।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: भारत में मोदी सरकार पेपर लीक के खिलाफ जैन जी तहरीक आदो गोडा खोले छड़ा। भारत जो तालीम वाले वजीर इस्तीफा दे छी। नौजवानों जो जंतर मंतर ते जशन। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुस्तफी थियल। वजीर धर्मेंद्र प्रधान जी जनता पार्टी तिर इस्तीफा। हुकूमत से गालन बाद एहतजाज खत्म करने जो ऐलान कर छोड़।

0: के लगे तो ती छोकरा थकजी पियान ही छोकरा मायूस थी वियान असा सिंध जो हिकड़ो पढ़ल लिखल शौर आहियूं जेका कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम जी तयारी कई आहे असां थकंदासीं कोन असां आख़िरी दम ते विढ़ंदासीं
1: जॾहिं तव्हां पंहिंजे हक़ लाइ बीहंदव न हक़ तव्हांखे कॾहिं बि घुरंदव अकेला विढ़णो पवंदो आहे इहा तारीख़ रही आहे जेको आहे उन्हनि खे रिज़ल्ट कोन था मिलनि घुरनि छा था घुरनि हिकिड़ो त पॉइंट आहे
2: एस पी एस सी असांजा मुतालबा सी सी चोवीह खे नल इनवाइट न कंदी
3: मेरिट जी लताड़ ऐं पंहिंजा नवाज़ ख़िलाफ़ नौजवान सरापा एहतजाज बणियल कैंप ते गुज़ारी متاثر امیدوارن شاگردن

0: चटाभेटी इम्तिहान बाजार 24 के नतीजन के रद्द करण ए कमीशन में सुधारण तई एहतजाज जारी रखण जो ऐलान। मुजाहिरन मूजिब मुतालबन की मञता लाए एहतजाजी कैम्प एक हफ्ते ते जारी रहंदी, जै बाद आइंदा की हिकमत अमली जो ऐलान कयो वेंदो। चीन पारां खिते में जारी सूरतहाल ते गणतीअ जो इज़हार। अमरीका ऐं ईरान खां मसले जे हल लाइ जल्द ॻाल्हियूं शुरू करण जो मुतालबो। ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास राग़ची जी चीनी हमनसब वांग यी सां किर्गिस्तान में मुलाक़ात। चीनी परडे॒ही वज़ीर पारां ईरान जी ख़ुदमुख़्तियारी जी हिमायत। वांग यी चयो त इस्लामाबाद मुफ़ाहमती यादाश्त नामो खिते में अमुन इस्तेहकाम तरफ़ वञण जो वाहिद रस्तो आहे। बीजिंग पाकिस्तान ऐं बि॒यनि मुल्कनि जी टियाकड़ी वारनि कोशिशुनि जी हिमायत जारी रखंदो। अब्बास राग़ची चयो त अमरीका जंगबंदी मुआदे जी भञकड़ी कंदे ईरान ते हमला कया। तहरान जी ॻाल्हियुनि वारी ख़्वाहिश बरक़रार आहे, छिताण में वाद नथा चाहियूं।
1: आप सुन रहे थे जीए FM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए FM 91.6।
3: मोहब्बत का नशा भी ना बहुत अजीब होता है। इंसान इतना मदहोश हो जाता है कि उसे अपने महबूब के सिवा कुछ सुझा ही नहीं देता।

0: ये भी तो जुल्म ही हुआ ना कि इंसान के दिल में कोई और बसता हो और तो किसी और को उम्मीद दिलाता।
1: मैंने हमेशा आपके लफ्जों पे एतबार किया, कभी भी आपके दिल में झांक कर नहीं देखा कि मोहब्बत के जिस हिसार में आपने मुझे बांधा था वो तो कब का टूट चुका है।

0: पर्दा पर्दा पर्दा, जब से रिश्ता जोड़ा है इसने तो मेरी जिंदगी अजाब बना के रखती है।
1: बस कर दो दुर्दाना, बस कर दो प्लीज।
2: खाओ मेरी कसम, तुम उसके बारे में नहीं सोचोगे।

0: आगे बर्बाद कर देगी।
1: अगर मुझे ना मिली तो बर्बाद हो जाऊंगा।
2: उस बेचारी का कसूर यह है कि वो शैतानों की बस्ती में अपने लिए इंसान तलाश कर रही थी।
3: बच्ची की रूह को छलने की है, उसके पाकीज़ा किरदार पर खींचड़ उछाली है तो तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। देखना
0: मैं ना पैरों के सामने तमाशा बन गई मामा।

0: से तुम्हारे लहजे की नफरत मेरी जान ले लेगी।
1: और आपकी बेवफाई मेरी जान ले चुकी है।
0: आज के बाद इस घर की तरफ नजर उठा के मत देखना। गेट आउट। एक बार कह देती कि तुम्हें इस घर से नहीं जाना।
1: मोहब्बत करने वाला जिंदगी से जाने का हुक्म देते तो हुक्म मान लेना चाहिए।
2: दिस 7 मार्च से जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
4: Yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

वाइट एज रूट लैंड वाइटमिन डॉटिया जो स्किन में पिंक फेयर और आपको देना निखरा चेहरा ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ वाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन का राज अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

मोहब्बत जान होती है, मगर ये जान लेने में हमें एक उम्र लगती है। कभी जब जान जाते हैं तो फिर ये जान जाती है। ये दुनिया जीत जाती है, मोहब्बत हार जाती है।

0: देखिए रासे उल्फत 7 अप्रैल से मंगल की रात 8 बजे पर।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: Yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।